0: रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? बी ऑनेस्ट विद अंडरग्राउंड एमईवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है कर रहा है बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ. वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा एक एम्पायर होगा तो उसको शूज के मिलेंगे.
1: मानेंगे.

0: 마지막 캐스트.
1: 아내를 만난 사람 안 되겠어.
2: 만약에 진짜요.
0: Viviendo en Nevi bola tha party mein emi ve paisa kamaya kya 101 tak ka tu khud ko bada bole mazaak hai kya label se aane ke baad tera kaam bana lekin mera naam aur banta aise bana kya biggest hai to tere samne hi bahut sare votes ke sath people choice award uthaya kya in hona bura nahi lekin mere hote hue khud ko bada bolna nahi bolne ka hai to fir asli independent banke dikhane ka sona chadane ka jena lagane ka har mahina mere jaisa banta video बनाने का कुल्फी रैपरों को कुल्फा कराने का समझ में आया क्या क्या बोलने का बंदा और वो कुल्फी रैपर का नाम क्या है
3: एमसी स्टैन
0: हाँ एमसी स्टैन

0: और एमसी सैंटू मेरे छाते पे, तेरे जिसे जितने लोग सोच रखते हैं उन लोग को लटकाऊंगा तराजू के कांटे पे, समझ में
1: आया क्या? आया क्या एलियन के शक्ल के? अला जादू

0: जूते पे जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, सब कुछ मेरे खुद के कमाई का। गाड़ी ले सकता हूँ फिर भी मैं स्कूटी पे, क्यों? क्योंकि अलग वजब तेरे भाई का।
1: मुझसे कोई नीचे नहीं, मुझसे कोई ऊपर नहीं, मुंबई की बोली में रैप करना पीछे नहीं, मुझसे और मेरी से सीखे ले, फिर जाके लिखे ले, तब जाके दिखे ले, समझ में आया क्या?

0: लिया समझ में आया क्या ये पैसे के पीछे हाँ पागल है इसलिए मुझे से ना खड़ा कर पाएंगे एम्पायर मेरा ही स्टेडियम मेरा ही मैच और मेरा ही रूल्स और मैं खुद ही एम्पायर बैठला बोल डाल
1: मानेगे
0: ये डिस गाना नहीं है जिस जिसको लग रहा है ये डिस गाना है ये डिस गाना नहीं है ये सच्चाई गाना है सच्चाई बोले ले अपुन बहुत दिन शांत थे लेकिन अभी और शांत नहीं रहूंगा मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ और कोई है क्या यहाँ पे है तो बताओ करके दिखाओ मालूम है ना
2: समझ में आया क्या